मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दिल तमने अपवानी मारी क्या नाच, लागणियों ने मापवानी मारी क्या नाच। तू प्रेम आपे के जख्मोनी भेट, जे मळे ते स्वीकारवानी मारी क्या नाच। थारी खुशी माज मारी खुशी रहेली छे। तू जीते।

0: આવ તો હારવાની મારી ક્યાં ના છે, તું કરી લેજે ખાતરી કદી મારા પ્રેમની, હથળીમાં દિલ મૂકવાની મારી ક્યાં ના છે, હાથ જાલો તો મઝધારે ના છોડી દેશો, મોત સુધી ચાલવાની મારી ક્યાં ના છે.
1: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के,

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

हेलो पालन बोर्ड 90.4 मेगाहर्ट्ज पर हूँ छू आरजे एआर आप सबनो दोस्त आप सबनो होस्ट बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केलवणी मंडल संचालित आ पालनपुर शहर ना समुदाय ना अवाज समा रेडियो पालनपुर पर हूँ आरजे एआर लईने आवु छू गुजराती भाषा नु साहित्य केटलीक रोचक अद्भुत सकारात्मक ऐतिहासिक संस्कृति ने अने आपना समाज ने एक साची दिशा आपनारी घणी बधी सुंदर मजानी वार्ताओ लईने आ बधी वार्ताओ माथी आ बधा कथानक माथी नवलकथाओ माथी चोक्कसपणे तमारा हृदय ने अने आवनारी पेढ़ी ने आपना गुजराती भाषाना सौंदर्यनी साथे आपना समाज जीवननी पण एक ओळख मळती रहेशे। हमणा हूँ आप सौने सौम्य तेजस्वीनी पुस्तक जेना लेखक छे डॉक्टर गिरीश ठाकर तेमानी तेओए ज्यारे ओएसडी तरीके सोमनाथ यूनिवर्सिटी में काम कर्यु हतु त्यारनी पोताना वांचननी विचारनी अने आसपासना स्थळोनी जे पण कथाओने माणी छे समझी छे विवेचन कर्यु छे तेने वार्ता स्वरूपे रजू करी छे। तेमानी एक थी पांच प्रकरणनी वार्ताओ आपणे माणी चुक्या छीए अने हवे माणीशु प्रकरण छ मृत्यु मरी गयु रेलोल। सोमनाथ प्रभासथी आश्रे 30 किमी दूर व्रजनी नदीना किनारा पर भगवान धन्वंतरीनो सुंदर आश्रम आजे पण विद्यमान छे। नदीनू खड़खड़ वहतु वहेण आसपासना अरण्यमाथी अनेक वनौषधिओने सौरभने लई वहती सुगंधित हवा अने अनेक प्रकारना पंखीओना कलरवती संगीतमय बनतु वातावरण आश्रमती तद्दन नजीक तक्षकनी गुफा अने बाजूमा घेघूर वडलो जेना सौथी ऊंची डाळीना पान लीला नहीं पण सफेद जोवा मळे छे। विराम बाद पर मारी साथे जोड़ायेला रहो अने सोमनाथनी पृष्ठभूमि नी वार्ताओने माणता रहो। मस्त रहो व्यस्त रहो ने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
0: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
0: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
0: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
0: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
0: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
0: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
0: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है, किस्मों और स्थान के अनुसार।
2: जी
0: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
2: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
0: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
2: जी
0: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
2: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
0: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
2: जी
0: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
2: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी।

0: फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
1: जी, श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
0: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियां उनके लिए अनुकूल हैं।
2: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
3: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन रामकृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडेचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को रामकृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र रामकृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: रामकृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा। शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है। बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिली जुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी,
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हो।

0: श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ आप बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: राम कृपाल, ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, न कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसके अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल 6ठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5ों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माता जी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा

0: माता जी ने पांडिचेरी के आश्रम में भी श्री अरविंद के विचारों को व्यावहारिक रूप दिया। श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पांडिचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
3: घर के पास लगा था मेला,

गई इस गीत में। अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहाँ।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: छेल्ला 12 वर्ष थी अहीं विकास ना संकल्पो कदी अटकता नथी, पुरुषार्थ नी गाथाओ क्यारे खूटती नथी। आ यात्रा छे छेल्ला 12 वर्ष थी विकास ने समर्पित यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना नेतृत्व ने। 12 वर्ष विश्वास ना, विकास ना, जन कल्याण ना। आ सफर छे मां नर्मदा थी जल समृद्ध थती धरानी, स्मार्ट सिटीज थी दुनिया मां चमकती आधुनिकतानी, बुलेट ट्रेन अने वंदे भारत नी गतिशीलता थी लखाता एक नवा भविष्य नी, अने गगनामता भारत ना आत्मविश्वास नी। 12 वर्षनी आ यात्रा छे गुजरातमां अंत्योदय अने गरीब कल्याणनी, सेवा अने सुशासननी, पीएम आवास, हर घर जल, किसान सम्मान अने आयुष्मान कवचथी मजबूत थता जन जनना आत्मविश्वासनी, अने हवे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेलना प्रयासोथी देशनुं ग्रोथ एंजिन गुजरात बनी रह्युं छे ग्रीन एनर्जी अने भविष्यनी आधुनिक टेक्नोलॉजीनुं पावर हाउस। आवो अविकासना महायज्ञने वधु वेगवंतो बनावीए, विकसित भारत माटे विकसित गुजरात बनावीए। 12 वर्ष विश्वासना, विकासना।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अक्का पालनपुरी नी ओळख इतले ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडिओ पालनपूर कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन.

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: सांभळ्यू छे?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: आ योजना थी तमारू घर साचा अर्थ मां सूर्य घर बनी जशे, एटले के लाइट बिल साव जीरो। इतलू ज नहीं, जो जरूरियात करता वधु विजळी पैदा थशे तो तमे तेने ग्रीड मां वेचीने वधारानी कमाणी पण करी शकशो। तो पछी राश एनी जुओ छो, आजे ज रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर

0: you like this video, subscribe to my channel right now. Just click on the subscribe button.
1: Press the bell icon on YouTube app.
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

मेरी बातें राजी हो सुनने को आहे, और जब हाथ तेरा मेरे हाथ में होता है, हाय कुछ कुछ होता

अक्का पालनपुरी नी ओळख इतले ट्यून रहे मस्त रहे समृद्ध रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: Hey guys, thank you so much for watching this video. Make sure to hit the subscribe button if you loved it. We're so close to 10,000 subscribers, so I'd love if you hit that subscribe button immediately to join my community so I can share my journey with you. Thank you so much. Hope you love this one. Let me know what you think in the comments. See you soon.
1: शहर नो आवाज एटले 90.4 FM रेडियो पालनपुर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडळ संचालित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आ शहर नी पोतानी ओळख आ शहर नी पोतानु टॅलेंट युवाओ माटे जागरूकता अने विज्ञान ना प्रचार प्रसार ना तमाम कार्यक्रम साथे समुदाय नी तमाम आवाज ने वाचा आपतो एकमात्र प्लेटफॉर्म एटले 90.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो पालनपुर सांभळता रहो मस्त रहो खुश रहो 90.4 FM।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अक्का पालनपुरी ने ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: છેલ્લા 12 વર્ષથી અહીં વિકાસના સંકલ્પો કદી અટકતા નથી, પુરુષાર્થની ગાથાઓ ક્યારેય ખૂટતી નથી. આ યાત્રા છે છેલ્લા 12 વર્ષથી વિકાસને સમર્પિત યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વની. 12 વર્ષ વિશ્વાસના, વિકાસના, જનકલ્યાણના. આ સફળ છે માં નર્મદાથી જળ સમૃદ્ધ થતી ધરાની, સ્માર્ટ સિટીઝથી દુનિયામાં ચમકતી આધુનિકતાની, બુલેટ ટ્રેન અને વંદે ભારતની ગતિશીલતાથી લખાતા એક નવા ભવિષ્યની અને ગગનામતા ભારતના આત્મવિશ્વાસની. 12 વર્ષની આ યાત્રા છે ગુજરાતમાં અંત્યોદય અને ગરીબ કલ્યાણની, સેવા અને સુશાસનની, પીએમ આવાસ, હર ઘર જળ, કિસાન સન્માન અને આયુષ્યમાન કવચથી મજબૂત થતા જન જનના આત્મવિશ્વાસની, અને હવે તો માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના પ્રયાસોથી દેશનું ગ્રોથ એન્જિન ગુજરાત બની રહ્યું છે ગ્રીન એનર્જી અને ભવિષ્યની આધુનિક ટેકનોલોજીનું પાવર હાઉસ. આવો આ વિકાસના મહાયજ્ઞને વધુ વેગવંતો બનાવીએ, વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાત બનાવીએ. 12 વર્ષ વિશ્વાસના, વિકાસના, જનકલ્યાણના.
1: હેલો હાય, નમસ્કાર. આપ સુન રહે હૈ રેડિયો પાલનપુર પર એક ગધે કી આત્મકથા. આજ ફિર સે હમ લેકર આયે હૈ અગલી બાત જહાં પે ખત્મ હુઈ થી ઉસસે આગે કી બાત. ये जो आत्मकथा है वो लिखी है कृष्ण चंद्र जी ने. तो शुरू करते हैं आगे. चपरासी का संकेत पाते ही मैं कमरे के भीतर चला गया और जोर से गुड मॉर्निंग झाड़ दी. मुझे भय था कि यदि हिंदुस्तानी भाषा में बात की तो बिल्कुल गधा समझा जाऊंगा. दिल्ली के दफ्तरों के संक्षिप्त अनुभव से मैं जान गया था कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी यहाँ अंग्रेजी भाषा का राज्य है. आप जब तक उर्दू या हिंदी में बातचीत करते रहेंगे दफ्तरी लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जो ही अंग्रेजी में दांत दिखाएंगे त्यों ही पलट कर आपकी बात सुनेंगे, जैसे आप सीधे उनके ननिहाल से चले आ रहे हो. और बात सुनते समय ऐसे मोहिनी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर होगी जैसे काम आपको नहीं उन्हें आपसे है. चेयरमैन साहब का रंग सांवला, कदनाटा और चेहरा बड़ा गंभीर था. उनकी आंखों से ऐसी चालाकी और दूरदर्शिता टपक रही थी जो कम से कम 5-6 इलेक्शन लड़ने के बाद ही आंखों में आ सकती है. आदमी बड़े घाव थे, इसीलिए एक गधे को कमरे में आते देखकर केवल क्षण भर के लिए चौंके, फिर तुरंत संभल गए और इस प्रकार बातचीत करने लगे जैसे आयु भर अंग्रेजी बोलने वाले गधों ही से उन्हें काम पड़ता रहा हो. तशरीफ रखिए, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा. मैंने कहा, अगर मैं तशरीफ रखूंगा तो आपकी यह आराम कुर्सी टूट जाएगी, इसलिए खड़ा ही रहूंगा. चेयरमैन साहब मुस्कुराए क्योंकि मैंने ठीक बात कही थी. क्षण भर के बाद फिर बोले, आपको यह स्वांग भरने की क्या जरूरत थी, आप सीधे साधे कपड़ों में भी तो मेरे पास आ सकते थे. मैंने कहा, हुजूर यह स्वांग नहीं वास्तविकता है. खैर अपना अपना शौक है, चेयरमैन ने किंचित क्रुद्ध होकर कहा. मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, और जब से यहाँ दिल्ली में एक महाशय ने दिन में लाल टेन और घंटे लेकर इलेक्शन लड़ा है मैंने हर प्रकार का आक्षेप करना छोड़ दिया है. आप भी चाहे तो गधे का स्वरूप धरकर इलेक्शन लड़ सकते हैं. अगर इस तरह आपको अधिक वोट मिलते हैं तो क्या हानि है. आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा. कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो

0: मैंने कहा, हुजूर, मैं कोई बहुरूपिया नहीं हूँ, सचमुच एक गधा हूँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए। चेयरमैन साहब को अब भी विश्वास नहीं आया। बोले, छोड़िए इन बातों को, मैं आज तक 6 इलेक्शन लड़ चुका हूँ और कभी हार नहीं खाई, मैं सब जानता हूँ। खैर, आप बताइए, आप कौन से वार्ड से आए हैं?
1: जी, अभी तो कृष्णनगर घाट से आ रहा हूँ।
0: तुम?
1: चेयरमैन ने सिर हिलाकर कहा और अपनी चंदिया के गिर्द सफेद बालों पर इस तरह हाथ फेरा जिस तरह फिल्म गृहस्थी में दुखिया बाप किसी विपत्ति में गिर जाने पर भिड़ता है।
0: तो आप कृष्णनगर वार्ड से खड़े हुए हैं? अच्छा, बताइए, कौन सी पार्टी ने आपको खड़ा किया है? कांग्रेस ने, जनसंघ ने, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने, कम्युनिस्टों ने? मेरा मतलब यह है कि आप किस पार्टी के उम्मीदवार हैं?
1: मैंने कहा, जी, मैं तो आपकी कृपा दृष्टि का उम्मीदवार हूँ। चेयरमैन साहब खूब मुस्कुराए, समझ गए कि किसी बहुत चालाक आदमी से पाला पड़ा है। बोले,
0: अब आप बनिए नहीं, साफ साफ बताइए क्या काम है। अगर मुझसे कुछ हो सका तो ज़रूर करूँगा, मगर एक शर्त है, अगर आप इलेक्शन जीत गए तो चाय की पार्टी।
1: देखिए, मैंने टोकना चाहा, लेकिन वे बोलते ही चले गए।
0: चाहे किसी पार्टी की ओर से जीते, चेयरमैन के पद के लिए वोट मुझे को देना होगा। लाइए हाथ, लाला संतराम जी।
1: उन्होंने हाथ मांगा, मैंने अपना कान आगे बढ़ाया। चेयरमैन साहब ने जोर जोर से मेरा कान दबाया तो उन्हें मालूम हुआ कि यह तो

पूंछ गधे का कान है, किसी बहरू पिए का लिबास नहीं है। बहुत घबराई, सिगार उनके मुंह से छूटकर मेज पर रखे कागजों में जा गिरा। दूसरे ही क्षण कागजों में आग लग गई। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के।

देखिए, मैंने क्षमा याचना करते हुए कहा, मैं तो कब से कह रहा हूं कि मैं गधा हूं, मगर आप मेरी बात सुनते ही नहीं। चेयरमैन ने आग बुझाते हुए क्रोधावेश में कहा, मैंने आपको लाला संतराम समझा था, कृष्णनगर का उम्मीदवार। मैंने पूछा, क्या मैं आपको लाला संतराम दिखाई देता हूँ? वो बोले, कुछ लोग बाहर से गधे दिखाई देते हैं, कुछ लोग भीतर से गधे होते हैं। मैंने समझा, संभव है अभीतर बाहर दोनों ओर से गधे ही हो, तो मुझे अपनी चेयरमैनशिप के लिए बहुत जल्दी वोट मिल जाएगा। लेकिन ओह, तुमने मेरा कितना समय नष्ट किया है। मैंने कहा, आपने मेरी बात तो सुनी नहीं, मैं तो यहाँ रामूधोबी के गरीब बीवी बच्चों। चेयरमैन ने घंटी बजाते हुए कहा, इस समय तुम मुझसे कोई बात न करो, चाहे दिल्ली के सारे धोबी मर जाए। देखते रही हो कैसी आग लगी है। आग सचमुच भड़क रही थी। चेयरमैन ने घंटी बजाई, जल्दी से फायर ब्रिगेड वालों को टेलीफोन करवाया। मैंने भी कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में खड़े होकर हाँक लगाई। थोड़े समय के बाद ही टंडन की आवाज़ों के साथ फायर ब्रिगेड के दो इंजन आ पहुँचे। उन लोगों ने सबसे पहले तो मुझे वहाँ से लात मार कर निकाला, फिर आग बुझाने लगे। मैंने सोचा, यहाँ रहूँगा तो संभव है आग लगाने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाऊँगा। तुरंत वहाँ से सरपट भागा और सीढ़ियों के नीचे आकर ही दम लिया, क्योंकि अब लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। नीचे आकर इंक्वायरी में एक बूढ़े परंतु अत्यंत हितैषी क्लर्क ने जान पहचान हुई। उसे रामू की पूरी कथा सुनाई। बूढ़े क्लर्क की आंखों में आंसू आ गए। उसे अत्याचारी समाज, क्रूर जीवन व्यवस्था और पूंजीवाद को लाखों गालियां सुनाने के बाद धीमे से मेरे कान में कहा, अगर तुम 2 रुपये मुझे दो तो मैं तुम्हारा प्रार्थना पत्र लिखकर पुनर्वास विभाग के दफ्तर में सहायता के लिए भिजवाए देता हूँ। मैंने कहा, मैं तो धोबी का गधा हूँ, न घर का न घाट का, मेरे पास 2 रुपये कहाँ। और फिर तुम जानते हो, 2 रुपये में तो 2 मन घास आती है, 6 शेर बाजरा, 3 शेर चावल, लेकिन दमे का 1 ही इंजेक्शन आता है। क्लर्क ने बड़ी उदासीनता से खांसते हुए कहा, और मुझे दमे का रोग है, हर रोज 1 इंजेक्शन लेना पड़ता है। बूढ़ा क्लर्क उदासीनता पूर्वक खांसता रहा और मैं वहां से सटक आया। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अगेन आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। पूछते पूछते आखिर में पुनर्वास विभाग के दफ्तर में पहुंच ही गया। दफ्तर में घुसते ही एक बहुत बड़ा सजा हुआ कमरा नजर आया, जिसके बीचों बीच एक बहुत बड़ी तिपाई पर बड़े गुलदान में सुंदर फूल खिले हुए थे। एक कोने में टेलीफोन एक्शन लगा था, जिसके पास एक अत्यंत सुंदर लड़की अपने नाखून रंगने में लीन थी। टेलीफोन एक्सटेंशन की मेज पर लिपस्टिक और क्रीम पाउडर की डिबिया इस प्रकार बिखरी पड़ी थी कि मैंने सोचा मैं गलती से पुनर्वास विभाग के दफ्तर में आने की बजाय मैक्स फैक्टर की दुकान में घुस आया हूँ। अतएव क्षमा मांगकर मैं वापस लौटने को ही था कि लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर बड़ी प्यारी नजरों से मेरी ओर देखते हुए कहा, यस प्लीज। मैंने झिझकते हुए कहा, मैं सहायता के लिए आया हूँ। लड़की ने स्विच दबाया, टेलीफोन पर बोली, राम लुभाया, एक आदमी तुमसे मिलने आया है। टेलीफोन बिगड़ा हुआ था, यह जाने क्या बात थी। जो कुछ भी वो सुनने वाला और सुनाने वाले दोनों की आवाज़ें टेलीफोन पर स्पष्ट सुनाई दे रही थी। जब लड़की ने राम लुभाया से कहा कि एक आदमी तुमसे मिलना चाहता है, तो उधर से आवाज़ आई, मैं इस समय

0: लस्सी पी रहा हूँ, उसे फर्स्ट क्लर्क के पास भेज दो।
1: लड़के ने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाई और फर्स्ट क्लर्क को टेलीफोन किया।
0: कौन?
1: उधर से आवाज आई।
0: मैं हूँ निर्मला।
2: हाय मेरी जान।
1: फर्स्ट क्लर्क ने उधर से भैंस की तरह आग भरी।
0: सुनो
1: निर्मला बोली।
0: एक बेचारा गरीब,
1: फर्स्ट क्लर्क ने कहा।
0: यहाँ सभी गरीब आते हैं, तुम सुनाओ तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी क्यों है? जी चाहता है सुनता ही चला जाओ। निर्मल, निम्मी, आज शाम को सिनेमा।
1: लड़की ने टेलीफोन बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपने गालों पर गाजा लगाया और अब के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को टेलीफोन किया।
0: डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने कहा, नहीं मिस निर्मला, इस समय मेरे पास कोहाट के शरणार्थी सरदार दरबार से मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं। बेचारों का सब कुछ लूट गया है। इस समय इनके 1,00,000 के क्लेम की पड़ताल कर रहा हूँ। उन्हें आगे किसी दूसरे के पास भेज दो। मैं तो इस समय बहुत मशरूफ हूँ।
1: बहुत अच्छा, कहकर लड़की स्विच गिराने वाली थी कि उधर से आवाज आई।
0: हेलो निर्मला।
1: जी
0: भाई, वो साड़ी तुम्हें पसंद आई?
1: डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पूछ रहा था।
0: जी वही पहने हुए हूँ, निर्मला जरा शौकी से बोली और स्विच गिरा दिया।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

वही पहने हुए हूँ। निर्मला जरा शौकी से बोली और स्विच गिरा दिया। उसके बाद आईने में उसने अपना मुंह देखा, मुस्कुराई, चेहरे पर पाउडर लगाया और स्विच दबाकर सुपरिटेंडेंट को टेलीफोन किया। जी देखिए, लड़की बोली। उधर से आवाज़ आई, हाय, किस तरह देखूँ तुमको? टेलीफोन पर तुमको कैसे देखूँ? यहाँ आ जाओ ना।

0: निर्मला खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, एक गरीब आदमी सहायता के लिए?
1: अरे हम भी तो किसी की सहायता की पात्र है।
0: सुप्रिटेंडेंट उधर से इंद्रसभा के स्टाइल में बोला। निर्मला ने जरा बनकर और तनकर कहा,
1: देखिए यह दफ्तर का समय है और तुमने खूब याद दिलाया।
0: सुप्रिटेंडेंट उधर से बोला, अभी अभी दफ्तर में हुक्म आया है कि दफ्तरों में काम करने वाली औरतें अगर शादी करेंगी तो उन्हें किसी समय भी नौकरी से अलग किया जा सकता है। बोलो अब क्या कहती हो?
1: निर्मला बोली, मैंने शादी का इरादा छोड़ दिया है। उधर से सुप्रिटेंडेंट ने संतोष की सांस ली। बोला, वह फिलिप्स का रेडियो सेट।
0: जी धन्यवाद, मिल गया, मगर आप 2 मिनट के लिए इस गरीब से बात तो कर लीजिए।
1: कौन है?
0: एक गधा। सुप्रिटेंडेंट ने एक जोर का कहका लगाया।
1: तुम भी खूब मजाक करती हो। खैर भेज दो उसे भीतर, अगर गधा न भी हुआ तो भी उसके दोनों कान खींचकर उसे गधा बना दूंगा।
0: जाइए, लड़की ने एक नाखून मुंह में दबाते हुए मेरी ओर बड़ी चंचल नजरों से देखते हुए कहा। कुछ इस प्रकार की यदि गधे के बजाय मैं आदमी होता तो अवश्य ही उस पर आशिक हो जाता।
1: सुप्रिटेंडेंट मुझे देखकर पहले तो खूब हंसा, फिर उसने टेलीफोन उठाकर निर्मला के इस क्रियात्मक मजाक की प्रशंसा की। फिर वह जरा से आगे आया और मेरा कान पकड़कर बोला, बोलिए मिस्टर डंकी, अब मैं क्यों ना आपको लात मारकर दफ्तर से बाहर निकाल दूं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मैंने कहा आप मुझे नहीं निकाल सकते, इसलिए कि मैं आपके पास एक प्रार्थना पत्र लेकर आया हूँ। सुप्रीडेंट आश्चर्यवश लगभग मूर्छित हो गया। आखिर बड़ी कठिनाई से बोला, फिर कहिए आप क्या कह रहे हैं। मैंने दोहराया। आखिर बड़ी मुश्किल से यह बात उनकी समझ में आई कि मैं सचमुच बोलता हूँ। कहने लगा, आपकी वार्ता शैली तो मुझसे भी अच्छी है, इसलिए कि मैं लखनऊ के आसपास का हूँ और आप शायद पंजाब के हैं। जी हाँ, सुप्रीडेंट बोला, मैं पिंड दादन का हूँ। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, फरमाइए क्या काम है। देखिए, मैंने कहा, मैं सहायता मांगने आया हूँ। आप शरणार्थी हैं? नहीं तो? तो फिर आप यहाँ क्या करने आए हैं? सुप्रीडेंट ने जरा खफा होकर कहा, सहायता के लिए आया हूँ।

0: यहाँ केवल शरणार्थियों की सहायता की जाती है जो पाकिस्तान से लूट लुटा कर आए हैं। और अगर कोई हिंदुस्तान में ही लूट जाए तो वो सहायता के लिए कहाँ जाए?
1: यह तो मैं नहीं बता सकता,
0: सुप्रीडेंट ने और भी खफा होकर कहा।
1: कम से कम इस विभाग में तो आप नहीं आ सकते, कोई और घर देखिए।
0: सुप्रीडेंट ने घंटी बजाई। चपरासी ने मुझे बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते हुए फिर मुझे वही अलौकिक सुंदरी मिल गई। मुझे निराश देखकर बोली,
2: क्यों
0: काम नहीं बना? मैंने पूरी बात कह सुनाई। बोली,
2: सुप्रीडेंट ठीक कहता है, अब तुम्हें डिपार्टमेंट और लेबर्स एंड इंडस्ट्रीज में जाना पड़ेगा।
0: कहाँ पर है? उस अलौकिक सुंदरी ने दयावश मुझे पूरा पता दे दिया और मैं धन्यवाद कहकर पुनर्वास विभाग से निकला और लंबे लंबे डग भरता मजदूरों के विभाग की ओर चला गया। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्ण चंदर। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे फिर से मिलेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख

0: अब मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: I'm sorry.
1: अल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं बेटा, उनको भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना। छोटा तो देखो कितना छोटा है,

आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन।

0: मुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

इतना आत्मविश्वास नहीं। 12 वर्षनी आ यात्रा छे गुजरातमां अंत्योदय अने गरीब कल्याणनी, सेवा अने सुशासननी, पीएम आवास, हर घर जल, किसान सम्मान अने आयुष्मान कवचथी मजबूत थता जन जनना आत्मविश्वासनी, अने हवे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेलना प्रयासोथी देशनुं ग्रोथ एंजिन गुजरात बनी रह्युं छे ग्रीन एनर्जी अने भविष्यनी आधुनिक टेक्नोलॉजीनुं पावर हाउस। आवो आ विकासना महायज्ञने वधु वेगवंतो बनावीए, विकसित भारत माटे विकसित गुजरात बनावीए। 12 वर्ष विश्वासना, विकासना, जनकल्याणना।

मेरी बातें राजी हो सुनने को आहे, और जब हाथ तेरा मेरे हाथ में होता है, हाय कुछ कुछ होता।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: Hey guys, thank you so much for watching this video. Make sure to hit the subscribe button if you loved it. We're so close to 10,000 subscribers, so I'd love if you hit that subscribe button immediately to join my community so I can share my journey with you. Thank you so much. Hope you love this one. Let me know what you think in the comments. See you soon.
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: मस मोटा पड़कार निवांतो, नानकड़ा निर्धार निवांतो। दुनिया ने देखाऊ नहीं पण क्या कोई है निरखेला अजवाड़ा ने अंधार निवांतो। कहानियों में भजवेला बहु अलग अलग किरदार निवांतो। तमें जोई रहा छो वातो, वातो है संजय त्रिवेदी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: अमोरे मियो दोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।